FM 105 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। आज सोमवार है। सक संवत 1948 के बैसाख माह की 21वीं तिथि तदनुसार दिनांक 11 मई सन 2026 है। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हारकर सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत से सजा कार्यक्रम वंदना। कहते हैं जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां सृष्टि है। शब्द नहीं, अर्थ नहीं, बस शिव सत्य है, इस पर कोई तर्क नहीं।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज में ये भजन। मोर मुकुट मस्तक सुहाए, अदर पे बंसुरिया, चितवन में जादू छाए वो सांवरा सांवरिया, देखो तो जरा चांद भी शरमाए जब कृष्ण अपना रूप दिखाए।

अभी आपने सुना सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये आरती, और इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, इसमें आप सुनेंगे हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: श्रोताओं, अब से कुछ ही देर के बाद यानी सुबह के 6:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 7 बजे। 8 बजे समाचार प्रभात का समय रहेगा। मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे 8:15 पर। सुबह 8:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुनेंगे, जिसमें आज की कलाकार हैं डॉ शशि प्रभा। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा सुबह 9 बजे। 9:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 9:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गाने नए पुराने। सुबह 10 बजे पिटारा उजाले उनकी यादों के आप सुनेंगे विविध भारती से। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोमनाथ अमृत पर्व की 75वीं वर्षगांठ पर उनके द्वारा दिए गए संबोधन का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 12 बजे हमारे केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं। 12:30 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा। 1:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। सखी सहेली विविध भारती से आप सुन सकते हैं दिन में 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा सेहतनामा विविध भारती से आप सुनेंगे। 5 बजे हमारे केंद्र से युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकते हैं, जिसमें आज की बात का विषय है खुद पर भरोसा रखें। साथ ही ज्ञान मंजरी में आप जानेंगे ताजमहल के बारे में। 5:40 पर कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं। 5:45 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली होगा। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम नारी लोक आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे, जिसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अन्य जानकारी में आप जानेंगे श्रमिकों के अधिकार के बारे में। हिन्दी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:50। शाम 7 बजे कृषकों के लिए कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा अमरूद बागवानी में कटाई छटाई कार्य का महत्व, और साथ ही भेंटवार्ता में जानेंगे सोलर संयंत्र स्थापना पर कृषकों को देय अनुष्ठान के बारे में, देय अनुदान के बारे में। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। 8 बजे सुगम संगीत का समय रहेगा। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के स्वर। रात्रि 9 बजे फोन करें गीत सुने। फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 9:30 पर विविध भारती से कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें 9:30 पर आप सुनेंगे छाया गीत। 10 बजे सुनेंगे आज के फनकार। 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात्रि 11 बजे आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार हिन्दी में। रात्रि 11:05 पर आज की सभा का समापन होगा। ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान।
1: से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गया।

क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 185।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। श्रोताओ आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज संगीत सरिता की इस श्रृंखला के अंतिम सोपान पर हम पहुंच गए हैं। आज की ये जो आखिरी कड़ी है वो केंद्रित है विदुषी कल्पना जोकरकर पर। कल्पना जी आप बताइए अपनी तालीम के बारे में। सबसे पहले
2: संगीत का वातावरण तो घर में था ही। मेरे पिताजी पंडित कृष्णराव मजुमदार जी

0: जो बहुत उत्तम गायक थे और उस्ताद रजब अली खान साहब के पट्ट शिष्य थे। तो घर में हमेशा ही महफिलों का आमने सामने बैठकर हमको कई कलाकारों को सुनने का मौका मिला, कई कलाकारों का आना जाना होता था, बातचीत होती थी संगीत विषय पर और अलग अलग पहलुओं से संगीत को जानने का मौका मिला
1: जी।
0: और तालीम तो मेरी बचपन से शुरू हो गई थी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया था और बहुत नियमबद्ध तरीके से तालीम देते थे। बेसिकली वो व्यवसाय से इंजीनियर थे, बहुत कठिनाइयों से संगीत की तालीम प्राप्त की और उसको आखिर तक निभाया
1: जी।
0: बहुत अलग अलग प्रकार के कलाकारों के सान्निध्य में वो आए, हमारे घर पे भी कई कलाकारों का आना जाना, महफिलें होती थी, बैठकें होती थी, तो संगीत के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है
1: जी।
0: करीब 12-15 साल मैंने उनसे तालीम ली और उनके गुजर जाने के बाद मैंने डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया
1: जी।
0: उसमें उन्होंने मुझे ठुमरी के विषय में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां, अलग अलग ठुमरियां सिखाई, ठुमरी की एक विशिष्ट शैली उन्होंने बताई, कई बंदिशों को सिखाया, बंदिशों में सुरों का लगाव और भाव भावाभिव्यक्ति कैसे की जाए
1: जी, जी।
0: किस शब्द को किस तरह पेश किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छा मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया
1: जी।
0: और मुझे हालांकि पंडित वसंत राजूरकर जी से भी मार्गदर्शन मिला, हैदराबाद में थी मैं मेरा विवाह होने के बाद
1: जी।
0: तो वहां उनके संपर्क में आने के बाद उनसे भी मैंने ग्वालियर घराने की कई बंदिशें, अष्टपदियां, तराने अलग अलग प्रकार के सीखे और टप्पा गायन शैली भी उन्होंने मुझे सिखाई, कई टप्पे ग्वालियर घराने के सिखाए। तो इस तरह अलग अलग पहलुओं से मैंने संगीत को देखा जाना
1: जी।
0: और फिर कुछ समय बाद अभी कुछ 10-12 साल पहले से बंदिशें बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ।
1: तो कितनी बंदिशें आपने रची हैं?
0: कई बंदिशें मैंने तैयार की है उसमें कि आज आपके सामने भी हम प्रस्तुत करेंगे
1: जी। जी
0: कुछ ठुमरियां तैयार की है, कुछ दादरे हैं, कुछ होरी है
1: जी।
0: ये जो उपशास्त्रीय संगीत के जो विविध प्रकार हैं इनमें भी मुझे बहुत रुचि है क्योंकि मैं सुगम संगीत बचपन से गाती आ रही हूँ
1: जी। जी
0: उपशास्त्रीय संगीत जो है वो शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों का मिश्रण है कह सकते हैं
1: जी।
0: या उसकी छाप उस गायकी पर है तो मुझे उपशास्त्रीय संगीत भी बहुत पसंद है
1: जी।
0: तो उसमें भी कई बंदिशें मैंने रची हैं
1: जी तो अभी क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
0: अभी राग हिंडोल में दो रचनाएं मैंने बनाई हुई हैं क्योंकि सुबह का समय है और उसके बारे में थोड़ा सा मैं चलन बता के और अनुजा वो दोनों बंदिशों का गायन करेगी
1: जी।
0: तो राग हिंडोल ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है
1: जी।
0: इसमें मध्यम तीव्र है और ऋषभ पंचम वर्जित है
1: जी। जी
0: और निषाद कर्ण स्वर में जो प्रयोग किया जाता है इसका वादी धैवत और संवादी गंधार है और इस राग की विशेषता है कि मींड और गमक के प्रयोग से इस राग की जो अलग अलग स्वरों की जो स्वरावलियां हैं
1: जी
0: वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो हिंडोल जैसे कि इसका नाम है तो उसी पर आधारित मैंने ये बंदिश में उसी का प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है
1: जी।
0: तो झूलत है कृष्ण मुरारी
1: वाह
0: राधे संग सखियां झुलावे,
1: क्या बात है।
0: तो रूपक ताल में ये मध्य लय की बंदिश है, अनुजा आपके सामने प्रस्तुत करेगी और उसके पश्चात एक तराना
1: जी।

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मन मोहित कर लिया हम सबका। ये जो बंदिश थी जिसे कल्पना जी ने रची, जिसमें कृष्ण का सखा भाव था, झूले की पींग मार रहे हैं कृष्ण जी और राधा झूल रही हैं, तो वो पूरा चित्रण इस बंदिश में मिल गया हमें, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है, चलने से पहले अपने साजिंदों का भी हम परिचय करा दें। तबले पर संगत की यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनौने जी ने। यति भागवत जी और ज्ञानेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अनुजा जी, आपने इस पूरे प्रोग्राम में जैसे चार चांद लगा दिया, तो आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: कल्पना जी, आपने इस श्रृंखला को प्रस्तुत किया और हमें जो आनंद मिला उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी श्रोताओं की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: महिला रचनाकारों की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थीं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत की ममता सिंह ने, गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर थे ज्ञानेश्वर सोनवणे। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? विविध भारती के फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। चलते चलते आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय
1: FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। सुबह के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर।

हेलो रणथंभौर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ममता गौतम और हाजिर हूं लेकर आपका अपना फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कहते हैं स्टे वेयर योर हार्ट फील्स हैप्पी नॉट हैवी, खुश रहिए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते। जिंदगी को इस अंदाज में जीना चाहिए, कभी अंदाज

तो कभी नजरअंदाज से, जिंदगी जिए जनाब बस अपने अलग अंदाज से। इसी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में पहला कॉल हमने लिया है याराना फिल्म के लिए। इस फिल्म के गीत को सुनने के लिए हमें कॉल किया है महमदाबाद गुजरात से कृष्ण भाई रेवारी, हीराबेन कमल और विजय रेवारी ने। तो सुनते हैं इन सभी की पसंद पर किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था याराना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत था और आप भी अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि आपको हमें कॉल करना है। हमारे फोन नंबर है 0746222161। इन नंबरों पर आप हमें सुबह 6:40 से 6:55 के बीच फोन कर सकते हैं और सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच अपना पसंदीदा गीत हमारे कार्यक्रम हेलो रणथंभौर में। इसके अलावा आप हमें

ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है AIRSWM1992@gmail.com। इस पर आप हमें कॉल करके, ईमेल करके और अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। तो आप चाहे तो हमें कॉल कीजिए, चाहे तो ईमेल कीजिए और सुनते रहिए हेलो रणथंभौर में अपनी पसंद के गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लीजिए अब सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है पूरब और पश्चिम फिल्म से। ये एक आरती है और इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है कुंदलवाड़ी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, संजय मुर्मेकर, भगवान खोतकर और शंकर कोंडावार ने। तो इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ये आरती पूरब और पश्चिम फिल्म से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर, ब्रजभूषण और श्यामा।

अभी आपने सुनी ये आरती पूरब और पश्चिम से, महेंद्र कपूर की आवाज थी। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम में शिव महिमा फिल्म से गीत। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है मथुरा उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन कविता, गोविंद सिमरन व्योमनी और पूरन जे ने। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर शिव महिमा फिल्म से ये भजन। हरिहरन की आवाज है।

0: अभी आपने सुना शिव महिमा फिल्म से गीत। आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम में अब सुनते हैं आप आए बहार आए इस फिल्म से गीत। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, अंकिता सिंह, कृषभ सिंह और वेदा सिंह ने। तो सुनते हैं आप आए बहार आई फिल्म से गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: कैसा कैसा

आप आए बहार आई, इस फिल्म से भी आपने सुना ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लीजिए अब सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म। फिल्म का नाम है धर्मा और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी आशा भोंसले। इस गीत को सुनने के लिए हमें कॉल किया है गांव रायपुर जिला झालावाड़ से मुकेश गुप्ता ने। तो सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत फिल्म धर्मा का।

0: Meine Hube, Hube.
1: अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था फिल्म धर्मा से। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंभौर।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर। लीजिए, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म आज का अर्जुन से। इस नगमे को सुनने के लिए हमें कॉल किया है ग्राम कल्लावास तिवारा लालसोट से, संतोष कुमार शर्मा, रेखा शर्मा, गिरिराज शर्मा और लाला शर्मा ने। तो सुनते हैं लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज में आज का अर्जुन फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें थी और फिल्म थी आज का अर्जुन। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। लीजिए अब कार्यक्रम में सुनते हैं अगला फरमाइशी गीत। फिल्म का नाम है ईना मीना डीका और इस नगमे को सुनने के लिए कॉल किया है ग्राम पीपरिया जिला सागर मध्य प्रदेश से उमा शंकर पटेल, शांति प्रियांशी नंदिनी माधव यशवंत और सिमरन ने। तो सुनते हैं इन सबकी पसंद पर ईना मीना डीका फिल्म से गीत। कुमार शानू की आवाज है।

अभी आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था फिल्म ईना मीना डीका से, पूर्णिमा और कुमार शानू की आवाजें थी। श्रोताओं आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर। कार्यक्रम में अब सुनते हैं गुंडा राज फिल्म से गीत। सुनने के लिए कॉल किया है ग्राम गोदन जिला दतिया मध्य प्रदेश से ब्रज किशोर कुशवाहा, रामरति कुशवाहा, सोनम और हर्षित ने। तो सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में ये खूबसूरत सा गीत गुंडा राज फिल्म से।

0: अभी आपने ये गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म गुंडा राज से।
1: बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो रणथंबोर। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनते हैं अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म से गीत। इसे सुनने के लिए कॉल किया है न्यू कॉलोनी ठिंगला सवाई माधोपुर से RD सेन और गायत्री सेन ने। तो सुनते हैं इनकी पसंद पर कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

अभी आपने सुना अकेले हम अकेले तुम फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है इसी का नाम जिंदगी फिल्म से, और इसे सुनने के लिए कॉल किया है ग्राम पांचोला सवाई माधोपुर से भंवर सिंह जादौन ने। तो सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

0: अलका याग्निक की आवाज में भी आपने सुना ये गीत, इसी का नाम जिंदगी फिल्म से। और इसी के साथ हमारा आज का हेलो रणथंभौर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंभौर चैनल है। सुबह के 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ

0: मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
2: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का, विभागों का, अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
1: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं एसबी त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
2: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकेन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है अर्जुन शर्मा।
3: सुजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईते, ओइना प्रशांत, हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112301 0112371717 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से

0: अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शशि प्रभा के गाए हुए राजस्थानी लोकगीत, और अभी आपने जो अंतिम में लोकगीत सुना वो था लखन भारती की आवाज में। और इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंबोर चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही के सालों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों

0: कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी रखा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ अभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में रखा गया है। इस दौरान महाआरती होगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शर्मा कल अजमेर जिले के पुष्कर के कडेल गांव में ग्राम विकास चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल से जल, जनधन खातों और उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है।
2: युवा, किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उठता है, गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है और इन्हीं को लेकर के हम चलते। पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती, ईंधन गीला हो जाता था, भूख देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: ग्राम विकास चौपाल में श्री शर्मा ने किसानों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री ने आज सुबह कडेल गांव में पैदल भ्रमण कर बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर में कल से बंदी समाप्त हो गई। बीती रात 12 बजे के बाद से अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के पास पानी प्रवाहित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कारण पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में प्रचंड लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
3: सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में मुक पक्षियों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: जोधपुर और बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। प्रदेश के 19 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हीट वेव की प्रबल संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रहेंगी। साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3-4 दिनों से जारी भीषण

0: गर्मी के दौर के बीच आज सुबह मौसम अचानक बदला और कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलता से बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलगाड़ियों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मिडिल बर्थ खोलने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे नियमों के तहत सुबह 6 बजे बाद बीच की बर्थ फोल्ड करना अनिवार्य है, जिससे निचली बर्थ पर यात्री आसानी से बैठ सके। उन्होंने बताया कि अपर बर्थ के यात्री पूरे दिन बर्थ का उपयोग कर सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 101.5 MHz पर यह आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंबोर चैनल है। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत और गजल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उदास की गाई हुई इस गजल के साथ।

अगम कुमार निगम और तुलसी की आवाज में भी आपने सुना ये गैर फिल्मी गीत। और इसी के साथ हमारा आज का गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैंने प्यार किया इस फिल्म के गीत के साथ। लता मंगेशकर की आवाज है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं असद भोपाल।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कैसे क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए

किशोर कुमार और सपना की आवाज में भी आपने जांबाज फिल्म का ये गीत सुना। कल्याण जी आनंद जी संगीतकार थे और गीतकार थे इंदीवर। लीजिए कार्यक्रम में अब सुनते हैं मैं तेरा हीरो इस फिल्म से गीत। नीति मोहन और जावेद अली की आवाजें हैं, कौशल मुनीर और दानिश शबरी का गीतकार हैं और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

मैं तेरा हीरो इस फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। लीजिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फूल और कांटे फिल्म से गीत, कुमार शानू की आवाज है। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीतकार हैं समीर।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम में दुश्मन फिल्म से गीत। उदित नारायण, लता मंगेशकर की आवाजें हैं, गीतकार है इंडीवर और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत दुश्मन फिल्म से।

लीजिए, आप सुनते हैं कार्यक्रम में रूही फिल्म से गीत। रश्मि कौर और सचिन जिगर की आवाजें हैं, संगीत दिया है सचिन जिगर ने, तो सुनते हैं ये गीत।

रश्मित कौर की आवाज में भी आपने रूही फिल्म से ये गीत सुना और इसी के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंबोर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम पिटारा उजाले उनकी यादों के।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर भी डेटे हैं,
0: हीरोइनें भी हैं,
1: हीरोइनों के भी डेटे हैं और ठहर गए। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के

0: कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कार्टून पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच में एक दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया, और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर जो दुनिया, उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
1: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहां,
0: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डायरेक्ट करके मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से वो प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना, देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
1: कनेक्शन
0: सबके। तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूं, 2-3 साल से रोज जा रहा हूं, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
1: अरे गजब,
0: रमेश तलवार से? वो तो यश चोपड़ा का असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर में 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं, एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार, मैं, हम सब ने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, तभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने, तो मेरे को पाली हिल पे हूँ, वहाँ पे आए वहाँ पे, तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि ये जी के पास में जाता रहा, तो ऐसे अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है, तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं जी की पिक्चर कैसे करूं, मैं उनका चेला हूं, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं जी से बात करता हूं, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जी से मैंने बात की कि ऐसा उन्होंने कहा, अभी तक करो क्यों नहीं करो।
1: ओहो,
0: मैंने कहा जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूं और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब मैंने नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूंगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली कभी यही है बिटुन
1: सागर साहब लिख रहे थे,
0: कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी,
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। उनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं।
1: ओ
0: तभी इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था, वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन गई थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे, उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखे थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप भी आ जाते थे बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, तो
0: हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहां पर बैठा करते थे, रमन राकेश बेदी अवतार गिल भरत कपूर हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा।
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहे तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना,
0: उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला जिसलिए उन्होंने, बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछली पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने उन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं, अगर आपको सूट करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ हाँ।
0: तो ना लूंगा 5 लाख, मैंने रमेश जी कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने भी फ्री लिखूंगा अगर चाहिए होता। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया। तो गाने वाले अब था, उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, बोले क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर बोले थे, रमेश का दोस्त ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ हाँ।
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुक गए, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए।

0: सारे स्टार
1: हाँ दिलीप कुमार लॉन्च कर रहे
0: हैं। दिलीप साहब यशोपुरा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देखे आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का एक सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे। तो कल जो मान गए, यश जोर की भी इज्जत करते थे मान गए, पुराना आदमी है जो भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे
1: कहानी ढूंढ रहे,
0: कहानी ढूंढ रहे क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग। तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया। उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं उनको एज राइटर। तो देखा अच्छा, मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी छोटे छोटे पिक्चर लेने के। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम
0: शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात नहीं, कभी पिक्चर बना से वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति,
0: नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था,
1: यश जी ने डायरेक्ट की वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट में यश चोपड़ा को भी सुना दूं
1: जी।
0: उन्होंने यश जी को सुना दिया, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को भी नहीं बोल सकता था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरी सब्जेक्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छा।

0: उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया, यश जोर को भी सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंक अपने इसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरन में चला गया, जो देव साहब का भांजा, क्या नाम है,
1: शेखर कपूर
0: शेखर कपूर, नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी पहली फिल्म की, कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉर्थ, और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनकी से। जावेद साहब लिखने वहां चले गए शबाना के शूटिंग पे, और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए, बहुत अच्छे सीन थे, बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कम्प्लीट ही देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं दो तीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कम्प्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ, तो तुम यार अपने दोस्त हो, तुम समझ सकते हो ना, तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 साल सीन से शुरू करके पिक्चर, मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है, स्क्रीन पे तैयार है, मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने। तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते, सुनाते, तो सी रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा,
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी में सुनूंगा।
1: अरे बाप रे,
0: उनका स्टाइल है जो सुने इतनी देर सुन सकता हूँ, इतने जो भी उन्होंने सुना, इन्होंने पहले 20 सीन तो पूरे क्लियर थे, वो थोड़ा सुना दिए, आगे के सीन सुनाए, उनके कुछ एक आध सजेशन जो आई, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया, कोई ली कोई नहीं ली, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो सजेशन ले ली गई, वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की थी, और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा, मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा,

0: मैं 10 बजे फ्लैट पे ला कर दूंगा।
1: वाह वाह,
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी,
0: तो 13 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया।

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: ये ऐसे फिल्म करने का, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी थे। और जब मैंने नूरी के हम प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी झुककर का भी शेयर था 5%।
0: बाबा
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी,

0: जो बाकी 60% थे, 10% सागर सदी राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनमोहन कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जैसी ने 10% करवा दिए, क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरामैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% पंडरी जुकर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
1: जी जी जी गजब।
0: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुकर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीरे की 2 बेटियां हैं उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था खयाम साहब, ये पिक्चर पहले नूरी बनाने वाले थे जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सर्दी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सर्दी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सर्दी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी क्योंकि कुत्ता हीरो है, तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं गया, नहीं बना गया, 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे कि बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनो,
1: प्रदीप को लेके,
0: लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुकर ने
1: दिलीप साहब को बता दी। ओहो, गजब।
0: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है। तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझसे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी हो वहाँ के थे पिशावर के
1: जी,
0: उस तरफ के, और मैं बफा एप्टाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो यारा यार के बदले जरा।
1: अच्छा,
0: यारा
1: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा किताब में आई,
0: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस करूंगा, सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उसमें बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज पसंद नहीं आएगी मैं कहूंगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत, और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपकी मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा। क्या आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं?
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे। उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते बैठते सोते जागते नहीं वाला होता हूँ।
0: जी जी।
1: और इतनी बड़ी कास्ट हो गई थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
0: दिलीप कुमार,
1: प्रदीप कुमार,
0: अरे बाप रे,
1: प्राण,
0: ऋषि कपूर,
1: अमरीश पुरी,
0: अमृता,
1: प्रेम चोपड़ा। अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
0: जी
1: है? फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
0: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
1: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
0: जी।
1: जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
1: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
0: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
1: मैं अलग हो गया, मैं उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी होंगी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
0: जी जी।
1: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
0: जी,
1: पहले मीटिंग हो चुकी थी
0: जी।
1: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर। उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
0: ओ,
1: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा कि ऐसा? बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्री देवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ, फिर आ जाओ। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कम्प्लीट नहीं था, लाइन आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
0: जी,
1: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक था ना पूरा फुल स्क्रीन पे फॉर्म में वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे है, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात।

0: वो होती है, अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है,
1: जी
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई थी, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा आप प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोला थे, रमेश आप यहां बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय होगी। दोनों खुश थे और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक थके, और वो सब मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है, तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहां से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहां पीछे सीट पे लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहां रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: ये प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ,
2: हाँ।
1: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारे फिल्म में भाग्य, सरकमस्टांसेस, एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भेजते हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवे माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टारकास्ट,
1: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूंगा। मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग चलो जाओ आते हैं तुमसे, शिमला शूटिंग हो, वहां नॉर्थ में शूटिंग हो, के जहां पे बोला जो जिस तरह लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया, महाजन साहब कैमरामैन थे,
2: ओहो
1: के महाजन, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की। क्या हुआ सब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले तो प्रॉब्लम थी उनकी।
2: जी जी जी।
1: ये अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.5 MHz पर। यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के सोमनाथ स्थित प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व कार्यक्रम का सी

मिश्रित संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ऐसे कुछ गीत जो मिले जुले होते हैं, कुछ भजन, कुछ कव्वाली, कुछ पॉप सॉन्ग्स, इस तरह के अलग अलग गीतों का ये मिला जुला रूप है। तो लीजिए, विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुनीता राव के गाए इस गीत का के साथ, जिसे लिखा है श्याम अनुरागी ने। सुनीता राव ने इसका संगीत बनाया है और एल्बम का नाम है चमके भिजुरिया।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के सोमनाथ स्थित प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
2: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमा में उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां, उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
3: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्लयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणं विनश्यति। नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंग टेम्पल at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 and of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
4: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: अभिषेक आज हो रहा है, इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहां विशेष तीर्थ होते हैं वहां पे सहस्र घट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं, लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
0: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण
1: जी,
0: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्तुति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो यह प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देख, भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार है वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2020.

0: 6. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honourable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tells us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. At the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है. मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से. और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है. जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं, कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है. चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है. अरब सागर के तट पर कपिला, हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है. और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं. और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है. हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है. राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है. सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा. उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को. और यहां पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है. शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं. डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहां पर पुष्पों से बनाए गए हैं. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है. हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है. साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा, सूर्य किरण फॉर्मेशन जो अलग अलग ये बनाएंगे. वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहां पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी. 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था. उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में. और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है.
0: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट नीलम. एंड एज यू मेंशन्ड दैट आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स से दैट अ प्रदक्षिणा ऑफ द डिवाइन प्रभासा दैट इज द सोमनाथ इज इक्वल टू द प्रदक्षिणा ऑफ द होल अर्थ इटसेल्फ. व्हाइल पीपल come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्त

0: विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहाँ भी कोई मंदिर होगा वहाँ त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेन्द्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यावस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जन्म में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान है वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है। वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal, Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate. And on his clarion call, it was not only the people of Gujarat but also the people of entire India that responded enthusiastically.
0: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है सोमनाथ मंदिर, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए, आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम, द टाइम फॉर द सूर्य किरण, द एरोबैटिक टीम, द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed, and a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं, और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या है, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है, और यदि म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है, इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में, हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई है। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहां पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे, और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी

0: हम आगे बढ़ेंगे और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहे, पेयजल की सुविधाएं रहे और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे

0: 64 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं, पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया, जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़कर आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना है कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
2: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य

0: जिसे स्वर्लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्राण, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रहकर प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है। इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपकी सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जा हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जा अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिवजी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाए। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं, ये विशेष महत्व हो जाता है।

0: कि एक मैन मेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मदच्छते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया रस, सोम एक प्रकार के अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतमतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: And the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहां पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर कि मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहनाकर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्तिभाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहां पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य, और अब स्वागत उद्बोधन यहां पर
2: विश्वनाथ सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। વિશ્વના સૌથી અધિક લોકપ્રિય નેતા અને આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની નજર જે રાજ્યની ચૂંટણી પર હતી તે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત

विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो

जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे, प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का

शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया।

जी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया, वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में, अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुल कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं, मिली है, लेकिन आप विड़म्बना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला

पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण की मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए

देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ।

0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra, Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Hara Hara Mahadev.
1: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया. माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए. सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया. सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति प्वाइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें. ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे. विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉ आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं. नमस्कार.
2: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
3: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के सोमनाथ स्थित प्रभासपाटन में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व कार्यक्रम का सीधा प्रसारण. अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से.

0: होने वाले हैं। ठीक 1:15 से आप
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इसके बाद श्री मोदी ने सोमनाथ पर डाक टिकट जारी कर जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रदेश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि पूरे देश में धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है। देशवासी एकजुट होकर संस्कृति और विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं।
1: हमारी विरासत के लिए, हमारी संस्कृति के लिए हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। 2026-27 में हमने प्रदेश के आध्यात्मिक उत्थान से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। पर्यटन आस्था की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध तनोट माता के समग्र विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई है। पुष्कर खाटू श्याम जी नाथद्वारा केशोराय पाटन गिरिराज जी चित्तौड़गढ़ जैसे धार्मिक और हेरिटेज शहरों में हेरिटेज बॉगवे का निर्माण करवाएंगे। किराड़ू के मंदिर समूह के संरक्षण और जीवद्वार के लिए कार्य कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर खाटू श्याम जी देशनोक डिग्गी में मुख्य प्रवेश मार्ग मॉडल रूप से बनाया जा रहा है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं।
0: प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं।

0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के इस्तेमाल को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक साल के लिए विदेश भ्रमण टालने का भी आग्रह किया है। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने और अत्यधिक सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने की बात कही। साथ ही लोगों से खाने के तेल के उपभोग में कमी लाने का आग्रह किया। उन्होंने किसानों से विदेश से आयातित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग की बात कही। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए स्थानीय वस्तुओं की खरीदारी पर जोर दिया। डीग जिले के जटेरी से अब आदि बद्री खो बरसाना और मथुरा को जोड़कर धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कल डीग के जटेरी गांव में आयोजित संध्या चौपाल में शिरकत की। उन्होंने ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि जटेरी को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। श्री बेढम ने कहा कि गांव से जुड़ा नया धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि जटेरी और पुंजरी में कुंडों के विकास के लिए 8.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कोटा के मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की स्थिति पर दोनों अस्पतालों में गंभीर संक्रमण और स्वास्थ्य जटिलताओं के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डॉक्टर नीलेश जैन की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को हाई रिस्क वाला बता रही है। अब तक दोनों अस्पतालों में 4 प्रसूताओं की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 4 अन्य प्रसूताएं किडनी खराब होने की समस्या से जूझ रही हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरिस्का में वन्य जीव अस्पताल और जांच केंद्र को मंजूरी दे दी है। इससे सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्य जीवों का उपचार अब सरिस्का में ही हो सकेगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जल्दी ही अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। अभयारण्य में बाघ बघेरों के अलावा सांभर और चीतल सहित करीब 20,000 वन्य जीव हैं। इनके बीमार और जख्मी होने की स्थिति में इन्हें स्थानीय स्तर पर भी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सवाई माधोपुर के रणथंबोर चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एनसीआरटी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशा इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओ, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
2: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके,

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसाइकिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चो।

0: मेरा।
1: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
2: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
1: वो तो ठीक है साहब,
2: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
1: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
2: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
1: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
2: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
3: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
4: माँ।
5: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
4: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
5: हाँ।
4: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
5: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
4: जी।
5: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
4: जानता हूं मां।
5: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
4: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
5: जाओ बेटा।
3: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।

आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया।

0: अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
2: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
2: नाथ सिंह निशाना साधो।
3: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
3: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
4: जी।
2: फायर।
3: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, तो पाकिस्तान में है और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो जो मेरा लौटने का समय नजदीक

0: नजदीक आता गया क्यों क्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुर से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCRT FM 101.5 MHz पर। यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

हमारे साथी बिल्कुल चौंक गए हैं, कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए ये तो भी मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूं। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

0: चले।
1: जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर

0: इसका जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीरामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान

0: करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
1: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
2: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के और संगीत है हेमंत कुमार का।

केएल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: है।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए। शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सबिता बैनर्जी और सीता की। फिल्म का नाम बाजे घुंघरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये ना पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये ना पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है।

कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा।

0: एक बेमिसाल शायर
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से
2: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: जाने के

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही।
1: बिल्कुल।
2: नहलाना जिसे कहते हैं,
1: अगर बहुत जरूरी
2: है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं। गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: रहती
2: है, तभी निकलती है। तो हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहां भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
2: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलीथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहां डालते हैं वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखें क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर दी
1: है,
2: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
2: नहीं नहीं,
1: है ना, तो ये गलत बात है ना,
2: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे, अगली बार खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो।
1: अच्छा।
2: इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था, और वैसे देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाची लो
0: नाची लो। तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा।
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।

उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें

0: गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दे या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाए। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहाँ पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना? रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी? सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में

0: दो ढाई शेर दूध ले लीजिए, अभी पहली बार ही बियाई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
1: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा, जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 शेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दो पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
0: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
1: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे दो घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गांव की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 शेर की जगह मुश्किल से शेर भर दूध निकलता था, लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे, कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है, जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यो बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई, आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
2: बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कानी हाउस भेज देंगे।
1: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था।

0: कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
1: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई, सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है, यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था, जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
2: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे, और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ, खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
2: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने, गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है, उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
3: अरे साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
3: देखिए, मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से, पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा। चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो

0: नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
1: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। अब बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न समझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्म गौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
1: ये पत्तियां कहाँ रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठाकर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गठ्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
3: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में, जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच करके ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर दीजिए इन्होंने।
4: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहां से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन

0: शक की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
1: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
0: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीक है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं, तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आजादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहां एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है, आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने देखा है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
0: और डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे, और रूठना मनाना तो चलता ही था। रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में भी खटास
1: आती है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्ती रहते हैं। जहां दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ मन में कुछ था। वरना आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम बात करते हो ना, क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल, सौ की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: आप नहीं निभा पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा पाओगे।
1: तो हमारी दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है मंजरी, मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते, जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं। लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है, और बहुत अच्छी बात है। जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने कहां गए।
1: सही बात है, कुछ मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप कहाँ रहती हैं, वही मंदाकिनी है हमने जो कभी साथ पढ़ा करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, है ना।
0: बिल्कुल सही बात,
1: वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है,
0: कुछ भी नहीं। अगर वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया।
1: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त है। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावना

0: रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब

0: कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
1: जी।
0: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसेमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसेमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
0: देखिए, कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज के तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसेमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेडक्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे वर्ल्ड थैलेसेमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपल्सरी किया था, उसके आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपलसरी कही गई। तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं,
1: उसकी
0: तो
1: इंडिविजुअलिटी
0: जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर, वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूं और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
0: देखिए, अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाया जा रहा था, एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोक पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहां का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है, तो इसके लिए उनका काउंसिलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा, वो जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, समझो आधी बीमारी है, एक में नहीं है, तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में, और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो, तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
0: और डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
1: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने, अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
0: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है, और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
1: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है, और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का, दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता

0: मैथिली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा।

105 MHz पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में, जहां हम लोग करते हैं रोचक और ज्ञान भरी बातें और साथ ही संगीत से करते हैं आप सभी का मनोरंजन। साथियों, मैं आपका रेडियो दोस्त राजकुंदन। साथियों, आज के बाद में बात करेंगे खुद पर भरोसा कैसे रखें, और साथियों उसके बाद हम वार्ता करेंगे रेडियो के 90 वर्ष के ऊपर, और कार्यक्रम के अंत में हम लोग ज्ञान मुजरे में बात करेंगे ताजमहल के ऊपर। तो साथियों, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक संगीत भरे गीत के साथ।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला।

तो साथियों आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। साथियों आज हम आज की बात में बात करते हैं खुद पर भरोसा कैसे रखें। दोस्तों मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी कर सकता है। साथियों आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है और बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों खुद पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, वह असफलताओं से घबराता नहीं है बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। साथियों जीवन में कई बार कठिनाई आती है किंतु आत्मविश्वासी व्यक्ति हार नहीं मानता, वह मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करता है। दोस्तों एक विद्यार्थी के जीवन में भी आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। यदि छात्र अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास रखे तो वह परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। साथियों आत्मविश्वास से व्यक्ति के अंदर साहस, उत्साह और नई ऊर्जा का विकास होता है। दोस्तों हमें हमेशा अपनी कमजोरियां पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की बातों से निराश होने के बजाय स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों आत्मविश्वास से किया गया कार्य सफलता की ओर ले जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खुद पर भरोसा रखना जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने की कुंजी है। इसलिए साथियों हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ

आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा आत्मविश्वास रखना चाहिए, चाहे जीवन में कोई सी परिस्थिति हो, कैसा भी काम हो, कुछ भी हो। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और साथियों, अपने युवा साथियों में तो आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए, क्योंकि हम तो आत्मविश्वास के बल पर ही चलते हैं। हम कहीं एग्जाम भी नहीं जा रहे हैं, तो अगर हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास होगा तो हम उस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। चाहे हम जैसे भी हैं, तो साथियों, आत्मविश्वास बेहद जरूरी है हमारे जीवन में। तो साथियों, बढ़ते हैं हम संगीत की तरफ और आपको लेके चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत।

0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो साथियों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की तरफ, और अब हम साथियों वार्ता में बात करते हैं रेडियो के 90 वर्षों के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, वो बात अलग है कि आज के दैनिक जीवन में हम लोगों ने थोड़ा रेडियो को साइड में कर दिया है, लेकिन फिर भी हम ये ना भूलें कि रेडियो हमारे सुख दुख का साथी है। दोस्तों रेडियो संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसने लोगों के जीवन में ज्ञान, मनोरंजन और सूचनाओं का प्रकाश फैलाया है। साथियों लगभग 90 वर्षों की यात्रा में रेडियो ने समाज को जोड़ने और जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों रेडियो का आरंभ भारत में 1930 के दशक में हुआ था। धीरे धीरे यह हर घर की पहचान बन गया। उस समय जब टीवी, मोबाइल, इंटरनेट नहीं थे, तब लोग समाचार, नाटक, गीत, खेल और शिक्षा के लिए रेडियो पर निर्भर रहते थे। साथियों गांव से लेकर शहरों तक रेडियो ने लोगों को देश दुनिया से जोड़े रखा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी रेडियो का विशेष महत्व था। देशभक्ति के साथ साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा। बाद में कृषि कार्यक्रमों, मौसम की जानकारियों और शैक्षिक प्रसारणों के माध्यम से किसानों और विद्यार्थियों को लाभ मिला। श्रोताओं आज के इस तकनीकी युग में FM रेडियो, ऑनलाइन रेडियो और पॉडकास्ट ने रेडियो को नया रूप दिया है। अब लोग मोबाइल पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुन सकते हैं। दोस्तों फिर भी रेडियो की सादगी और विश्वसनीयता आज भी लोगों के दिलों में बनी हुई है।

रेडियो केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने वाला सशक्त माध्यम है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में भी रेडियो सबसे भरोसेमंद माध्यम साबित हो रहा है। साथियों, रेडियो के 90 वर्ष, उसकी सफलता, लोकप्रियता और उपयोगिता के प्रतीक हैं। हमें इस अद्भुत माध्यम का सम्मान करना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। साथियों, रेडियो के 90 वर्षों की जो ये यात्रा है, बड़ी ही अविस्मरणीय है। इस 90 वर्षों में रेडियो हमारे साथ हर पल खड़ा रहा है। मौसम की जानकारी से लेकर शैक्षिक समाचार से लेकर स्वतंत्रता संग्राम संबंधी जानकारी से लेकर हमारे मन में देश प्रेम की भावना जागृत करने से लेकर हर तरीके से रेडियो ने हमारे जीवन में योगदान दिया है। तो हम रेडियो के इस 90 वर्ष के सफर को याद करते हैं और रेडियो को हमारे दिल में सम्मान देते हैं। तो साथियों, ये थी कुछ वार्ता 90 वर्ष रेडियो के ऊपर। अब आपको फिर से लेके चलते हैं संगीत की दुनिया में और आपको फिर से सुनाते हैं एक मीठा मीठा गीत।

तो साथियों आइए बढ़ते हैं हम कार्यक्रम के अंत की तरफ। तो हम कार्यक्रम के अंत में साथियों आज बात करेंगे ज्ञान मंजरी में ताजमहल के ऊपर। दोस्तों ताजमहल के बारे में आप सभी जानते होंगे, ताजमहल का क्या है, कहां पर है, किसने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, तो आज हम उन सबके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। यह एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। दोस्तों इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। साथियों मुगल सम्राट शाहजहां के समय मुगल वास्तुकला अपने शिखर पर थी। ताजमहल उन्हीं वास्तुकलाओं का एक उदाहरण में सर्व प्रसिद्ध है। दोस्तों ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों यह मकबरा 17 हेक्टेयर मतलब 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें प्रस्तुत और एक गेस्ट हाउस भी शामिल है। दोस्तों इसे 3 तरफ से घिरी अनियंत्रित दीवार से घिरे औपचारिक उद्यान में स्थापित किया गया है। वैसे तो इस मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 तक पूरा हो गया था, लेकिन दोस्तों परियोजनाओं के अन्य चरण में यह काम 10 वर्षों तक जारी रहा था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों यह भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक है। दोस्तों ताजमहल सालाना 7 से 8 मिलियन आगंतुकों को आमंत्रित करता है। 2007 में इसे विश्व के नए 7 आश्चर्यों में शामिल कर विजेता घोषित किया गया था। साथियों 1666 में मुमताज महल की कब्र के बगल में शाहजहां की मृत्यु के बाद उनकी भी कब्र बनवाई गई और इन दोनों को मकबरे में तब्दील कर दिया गया। साथियों मूल रूप से आज ताजमहल जहां स्थित है

राजस्थान के कछवाहा राजवंश की संपत्ति थी। मतलब जिस जगह ताजमहल बना हुआ है वह राजस्थान के कछवाहा राजाओं की संपत्ति थी, जिसे चार हवेलियों के बदले अधिकृत किया गया था। इसका उल्लेख इतिहासकार अब्दुल हमीदी लाहौरी ने अपनी पुस्तक बादशाहनामा और फरमान में किया है। साथ ही नदी के किनारे कुओं की श्रृंखला पर ताजमहल का आधार है। साथ ही इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, संतराश, पच्चीकार, नक्काश का चित्रकार, लिपिकार, गुंबजकार एवं अन्य कलाकारों को संपूर्ण साम्राज्य मध्य एशिया और ईरान से बुलवाए गए थे। साथियों सोचिए उस समय ताजमहल कितनी भव्य इमारत रहा होगा, जिस तरह से यहाँ के मिस्त्री और कलाकार बुलवाए गए थे। वाकई ताजमहल देखा जाए तो विश्व के सात अजूबों में से एक है। साथियों चर्चा आगे भी जारी रहेगी, फिलहाल मैं आपको सुनवाता हूँ एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:45 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली। शाम 6 बजे सुनिए कार्यक्रम नारी लोक। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:50 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 7 बजे सुनिए कार्यक्रम कृषकों के लिए। 7:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 8 बजे सुनिए सुगम संगीत और 8:30 पर आनंद लीजिए पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम यादों के स्वर का। 8:45 पर होंगे हिंदी में समाचार। रात 9 बजे

रात 9 बजे 9:30 पर सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम छाया गीत। 10 बजे कार्यक्रम आज के फनकार और 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार।

ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी सवाईमाधोपुर के रणथंभौर चैनल से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं वाणी जयराम और साथियों की गई इस भक्ति रचना से।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर की गई इस भक्ति रचना के साथ ही गोधूली कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी लोक।

नारी लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी सखी रुक्मणी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ जानकारी भरी बातें और साथ ही करवाएंगे मनोरंजन प्यारे से गीतों के साथ। तो आइए सखियों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

बहनों राष्ट्र जैसे कि बहनों आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बहनों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में हर साल 11 मई को यानी आज के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। 11 मई 1998 को भारत के राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफलतापूर्वक 3 परमाणु बमों का परीक्षण किया गया और भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इसके अतिरिक्त 11 मई को ही स्वदेशी विमान हंसा 3 की पहली उड़ान और त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था। सखियों इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश के सभी वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करना और प्रोत्साहित करना है जिससे भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन सके। इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि स्वदेशी तकनीकी और AI जैसी प्रौद्योगिकी समाज के सभी वर्गों के विकास में कैसे सहायक हो सकती है। सखियों वक्त तो चला है आपके मनोरंजन का, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो.
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया. मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी.
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं.
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड.
4: आपने तो बचा लिया दीदी.
3: काम से नहीं.
2: आरबीआई कहता है
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव. बहनों आज हम बात करेंगे श्रमिकों के अधिकार के बारे में. जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश के कल कारखानों, होटलों, रेस्टोरेंट, निजी संस्थानों और सरकारी सेक्टरों में सैकड़ों श्रमिक कार्यरत हैं. वो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपना कार्य करते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हैं. परंतु बहनों दुख होता है जब श्रमिकों को ये अधिकार जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते और उनका शोषण होता है. बहनों श्रमिकों को अधिकार है उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिले, उनके कार्य के घंटे 8 घंटे से अधिक न हो और यदि उनके 8 घंटे से अधिक कार्य करवाया जाता है तो उन्हें ओवरटाइम का भत्ता मिलना चाहिए. श्रमिकों को भी जागरूक रहना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या क्या हैं, वरना उनका नियोक्ता उनके अधिकारों का हनन करते हैं. मजदूरों की सुरक्षा करने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जैसे फैक्ट्री अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट अधिनियम, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम आदि. साथ ही सखियों सुरक्षित कार्यस्थल भी उनके लिए होना बहुत आवश्यक है. श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलना अनिवार्य है जिसमें दुर्घटनाओं से बचाव के लिए उचित उपकरण और प्रशिक्षण शामिल है. सखियों सामाजिक सुरक्षा के तहत पीएफ, ग्रेच्युटी और ईएसआई के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का भी अधिकार श्रमिकों को होता है. इसके साथ ही वीकली ऑफ का अधिकार, जहां पर सखियों महिलाएं काम करती है वहां मैटरनिटी लीव और सम्मानजनक काम करने की स्थिति अनिवार्य है. साथ ही श्रमिकों को नियुक्ति पत्र पाने का अधिकार भी है. सखियों अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत.

هذا من قيمة.

सखियों, घड़ी की सुई हमें अपना कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाने का इशारा कर रही है, तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम नारी लोक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के अपनी सखी रुक्मणी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी लोक FM 101.5 MHz पर। यह आकाशवाणी सवाई मधोपुर का रणथंबोर चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:50 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। सोमनाथ लोगों को याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में राज्य स्तरीय समारोह रखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जो हमारी अजय सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तनोट माता, पुष्कर, खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ जैसे आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहां भी हमारी विरासत है और विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।

0: तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली के मुंडका बरक्कलवाला टोल प्लाजा पर इस बैरियर रहित तकनीक की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस उन्नत प्रणाली से टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम होगा और ईंधन की बचत होगी तथा प्रदूषण में काफी कमी आएगी। नई तकनीक के तहत वाहन चालक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल कॉरिडोर से गुजर सकेंगे और टोल का भुगतान स्वचालित रूप से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सालाना लगभग 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ, शेर, चीता जैसी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने बताया कि अगले महीने भारत में पहली और दूसरी तारीख को नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के तहत पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों के भीतर देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
2: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ाकर के 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का यह अवसर प्राप्त हुआ।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल का भी विशेष प्रावधान किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वे आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के विज्ञान क्लबों से जुड़े छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। इससे पहले राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने विज्ञान और तकनीक का उपयोग समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए करने का आह्वान किया। श्री बागड़े ने संस्थान से अनाज और सब्जियों में पेस्टिसाइड तथा रसायनों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील को राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। श्री बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वैश्विक संकटों के दौरान प्रधानमंत्री ने हमेशा ऐसे दूरदर्शी निर्णय लिए हैं जिनसे देश सुरक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिक एकजुट होकर प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करें।
3: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या

0: हुई हो, तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए, जो पेट्रोल डीजल के लिए, गैस के लिए और सोना नहीं कर दे। एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को, जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत 1 मई से शुरू हुई स्वगणना में पिछले 10 दिन में 6.5 लाख से अधिक परिवारों ने भाग लिया है। इन परिवारों ने इस डिजिटल प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। स्वगणना के मामले में जयपुर जिला अव्वल है। 50,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना पूरी की है। सीकर जिला 32,000 परिवारों की स्वगणना के साथ दूसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि स्वगणना की प्रक्रिया 15 मई तक जारी रहेगी। प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना करेंगे। यह काम 14 जून तक चलेगा। उधर बालोतरा जिले में शत प्रतिशत स्वगणना पूरी करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को आज जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। भीलवाड़ा के रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए रीको ने भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 1500 से लेकर 36,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक रीको के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगामी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रीको ने इस पार्क में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 221 करोड़ रुपए विकसित किए हैं। राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कई हिस्सों में आज लू से जनजीवन प्रभावित रहा। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रातें भी इन दिनों तप रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं फलोदी में तापमान 46.8 तथा जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 4-5 दिन बना रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग में इस दौरान लू का दौर जारी रहने की संभावना है। उधर अगले 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा मार्ग पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वंडर चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में इन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये युवक मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बताया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य भर के शिवालयों में विशेष आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर बिना रुके वाहनों के टोल काटे जाने की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के युवाओं में विज्ञान और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर बनेंगे। और राज्य के पश्चिमी जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा रिफाइनरी में जुलाई महीने से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से यूनिट की कमीशनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, किंतु उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले यूनिट में आग लगने की घटना के बाद ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रिफाइनरी से जिले की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। इससे बालोतरा प्रदेश का तेजी से आगे बढ़ता जिला बन चुका है। तेजी से हो रहे विकास की कड़ी में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पचपदरा बालोतरा में लग्जरी होटल्स और कई नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं। साथ ही रेलवे की ओर से बालोतरा से रिफाइनरी तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम किया जा रहा है।

वहीं कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी बालोतरा बाड़मेर तक पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ रीको ने रिफाइनरी से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट के उद्योगों के लिए जमीन आरक्षित की है। बोरावास कलावा में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते हुए पहले चरण में भूखंडों की नीलामी भी की जा चुकी है। वहीं ये स्थान पेट्रोकेमिकल्स हब बनने की ओर तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बालोतरा रिफाइनरी क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें स्थानीय उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और रीको के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि रिफाइनरी परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक

0: परियोजना के शुरू होने के बाद बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं बनी हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। बैठक के दौरान राजस्थान पेट्रो जोन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि रिफाइनरी के पास बोरावास कालावा सिंधियों की ढाणी वेदरलाई मालियों की ढाणी थोब और जेरला क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम रथ अभियान के जरिए जिले के गांवों ढाणियों के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 27 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान 15 मई तक चलेगा। ग्राम रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 13 विभागों की सरकारी योजनाओं खासतौर पर कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। कृषि के अलावा उद्यानिकी पशुपालन डेयरी मत्स्य सहकारिता सिंचाई राजस्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग शामिल है। रथ पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। हर रथ में एक सुझाव पेटिका है। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव प्रशासन तक सीधे पहुंचा रहे हैं। रथ में पहली बार कलाकार भी शामिल किए गए हैं जो रथ के साथ गांव-गांव जाकर लोकगीतों और नाटकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। जिले की सिवाना पचपदरा और बायतू विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में ये रथ पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल भी आयोजित हो रही है जिसमें स्थानीय विधायक जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर आमजन की परिवेदनाएं सुन रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों बालोतरा जिले के दौरे पर रहे। श्री बागड़े ने आसोतरा में ब्रह्मधाम में पूजा अर्चना की और गादीपति तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मवड़ी के ब्रह्म ऋषि खेतेश्वर वेद विज्ञान गुरुकुल पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने सदैव हमारी सभ्यता और संस्कारों का संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ है और भारत ने अपने इसी ज्ञान और दर्शन के बल पर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है। जिले में 4 मई से 10 मई तक अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम सुरक्षित विद्यालय सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज रखी गई है। अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियों के साथ आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं बालोतरा जिला अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसके साथ ही बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मिंदर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मारी निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में आए हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़िया रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत कीनी। कजरा नौजवाना माए विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर बनायो चावेला। और प्रदेश रा आतुणी हल्का माए जबरदस्त गर्मी और लू। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। गुजरात रा सोमनाथ मंदिर ने उजू बनावन रा 75 साल पूरा भेवन रा मौके आखा देश माए आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाई चियो। ई मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर माए पूजा अर्चना कीनी। गुजरात माए राखी ज्या सोमनाथ अमृत महोत्सव माए श्री मोदी कहो के सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी है। वह कहो कि सोमनाथ लोगों ने याद दिलावे है कि जनाऊ जुड़ियो रहवण री सूरत में आई कोई देश लंबा भगत नहीं मजबूती चाल सके है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप करा था, तो साथ ही

0: पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मौके राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा झारखंड महादेव मिंदर माई राखी चियो। इन माई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो के 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रा संकल्प ओं सोमनाथ मिंदर ने ओजो सुधारी जियो जो माणी बेहतरीन सांस्कृतिक भावना रो दर्शाव करे है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री विकास और विरासत री सोच री सराहना करता थका कहो के देश भर माए अयोध्या काशी और उज्जैन सरीखी धार्मिक ठोड़ा रो कायाकल्प करियो जा रियो है और राज्य सरकार ही तनोट माता पुष्कर खाटू श्याम जी और गलता तीर्थ सरीखा आस्थारा केंद्रा ने विकसित करण सारू लगातार काम कर रही है।
2: राजस्थान के अंदर उस तीर्थ को हम विकसित करना चाहते हैं, लगातार उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारी विरासत है उस विरासत को संभालते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब तक हमने 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई है। हर साल हम 50,000 हमारे उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम हम करते हैं। इस वर्ष भी हमने 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, नेपाल में 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न स्थलों पर यात्रा कराई है।
1: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहो है कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टूल सिस्टम सागे देश में हाईवे मैनेजमेंट रो नुवो दौर शुरू हुयो है। वे आज नई दिल्ली रा मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा में थे बिना बैरियर वाले तकनीक री शुरुआत की नी। श्री गडकरी कहो कि ई तकनीक गाड़ियां टोल कॉरिडोर 100 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार निकल सकेला और टोल रो चुकारो आप पहचावेला। वह कहो कि ई व्यवस्थाओं हर साल करीब 285 करोड़ रुपया रो तेल बचेला। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो है कि बाघ शेर और चीता सरीखा मोटा जिनावरा न बचावन सारू कारोबारियां का न्यू रकम देवनो घणो जरूरी है। वह आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII रासालाना व्यापार शिखर सम्मेलन में बोल रहा है। श्री यादव कहो कि पहलो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन 1 और 2 जून ने नई दिल्ली में रखो जावेला। वह बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाला राज रा 10 साल में देश में टाइगर रिजर्व री तादाद में बढ़ोतरी हुई है।
3: 10 सालों में हमने टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ाकर के 58 कर दी है। हिंदुस्तान के हर जगह पे हमारे पास दुनिया का हर तरह का जंगल है और दुनिया में जो 7 बिग कैट्स है, भारत ही एक ऐसी कंट्री है आउट ऑफ 7, 5 बिग कैट्स हमारे यहाँ पर है। हमने दुनिया को कंजर्वेशन का एक ये रास्ता दिखाया है कि हमारे यहाँ से चीता जब एक्सटिंक्ट हुआ तो दुनिया का फर्स्ट वाइल्ड चीता का इंटर कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन करने का काम भारत को करने का ये अवसर प्राप्त हुआ।
1: केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी रोजगार और आजीविका मिशन कानून लागू वेवन री अधिसूचना जारी कर दीनी है। इन पाछे ओ कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू भेजा वेला। इन तेत गावाई हलका माए साल माए 125 दिन री मजूरी री गारंटी दी जा वेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब ई मद माए चालू माली साल माए 95,692 करोड़ रूपया राखी जा है। इस आगे महिला मजूरानी भागीदारी बधावन सारू कमठाणा माथे बच्चानी देखभाल रा खास प्रावधान करी चिया है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा नौजवाना माय विज्ञान और तकनीकी कौशल न बधाओ देवन सारू महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त रा नाम परा ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करियो चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रे मौके जयपुर में राखी चिया राज्य स्तर रा जलसा माए ओ ऐलान कीनो। वे कहो कि जयपुर रा कोचिंग हब माए इनोवेशन सेंटर खोलियो जावेला। कार्यक्रम रे दौरान श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश भर रा विज्ञान क्लबाऊ जुड़िया विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ही विज्ञान और तकनीक ने समृद्ध और स्वस्थ जीवन सारू काम लेवन बाबत कहो है। वे आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी

0: के दिवस रे मौके जयपुर रा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सिरी का नींव राखी जा कार्यक्रम माई बोल रहा है। श्री बागड़े इन संस्थानों अनाज और तरकारियां ने बचावन सारू काम ली जावन वाली कीड़ा मरण री दवाइयां और रसायन री जांच सारू नुआ उपकरण विकसित करने बाबत कहो। वे कहो कि मौजूदा दौर में खान पीन री चीजा में जहरीली चीजा री मौजूदगी री जांच घनी मोटी जरूरत है। ई मौके राज्यपाल राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 री स्मारिका और पोस्टर रो विमोचन कीनो। चालू माली साल 2026-27 माए देश री माली व्यवस्था माए 6.6% री बढ़ोतरी रा आसार है। भारतीय स्टेट बैंक का न्यू आज जारी रिपोर्ट रे मुजब लाडला माली साल री चौथी तिमाही माए असली सकल घरेलू उत्पाद GDP माए बढ़ोतरी रो अनुमान करीब 7.2% लकैचियो हो। इन बीच उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री साधना ने बुद्धियों काम लेवन और बचत री अरज ने देश ने माली तौर मजबूत बनावन री दिशा माई मोटो जतन बतायो है। श्री बैरवा कहो कि दुनिया रा मौजूदा हालात न ध्यान रखता थका विदेशी मुद्रा भंडार न बचावन सारू जनता ने प्रधानमंत्री री अरज माननी चाहिए।
1: जब भी ऐसी कोई वैश्विक महामारी हुई हो या वैश्विक समस्या हुई हो तब उन्होंने एक एक स्टेप लिया जिससे कि हमारे देश में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जो पेट्रोल डीजल के लिए गैस के लिए और सोना नहीं कर दे, एक उन्होंने कहा है, संदेश दिया है कि अफवाह नहीं करें। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। हम सबको आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची नहीं करके हम एक आय को हमारी को जिसका अगर हम बचत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे काम।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 रातेत 1 मई उचाल रहा जनगणना रा पहला दौर रातेत करी जी स्वगणना माए लाडला 10 दिन माए 6.5 लाख उम्बत्ता परिवार शामिल भैर डिजिटल प्रक्रिया पूरी कर लीनी है। स्वगणना रा मामला माए अव्वल जयपुर जिला माए 50,000 उम्बत्ता परिवार स्वगणना पूरी कर लीनी है। सीकर जिलो 32,000 परिवारों की स्वगणना सागे दूजा नंबर माथे है। ध्यान जोग है कि स्वगणना रो काम 15 मई ताई चलेला। 16 मई उ 14 जून ताई प्रगणक घर घर जार मकाना री गिनती करेला। इबीचे बालोतरा जिला माए सगड़ा घर माए स्वगणना पूरी करावन वाला प्रगणका और सुपरवाइजरा रो आज जिला कलेक्टर मान कीनो। भीलवाड़ा रा रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क माए कारखाना लगावन वाला सारू रिकोरियो रो प्लॉट देवन रे प्रक्रिया शुरू करी ची है। इना तेत 2,500 से 36,000 वर्ग मीटर ताई रा प्लॉट मुहैया कराया जावेला। राइजिंग राजस्थान अभियान रा तेत राज्य सरकार सागे करार करन वाला निवेशक रिकोरा ऑनलाइन पोर्टल रे जरिए 14 मई ताई अर्जी दे सके है। ई पार्क माए बुनियादी सुविधा विकसित करण सारू करीब 221 करोड़ रुपया मंजूर करी चिया है। रबे मौसम तजरा आतुणी हलका माए घनी जोरदार गर्मी बीच लू बाज रही है। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और जोधपुर रा कई हलका माए आज लू बाजनो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो। बाड़मेर माए 47.3, फलौदी माए 46.8, जैसलमेर माए 46.5 और बीकानेर माए 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। कई थोड़ा रात्रि बगती तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब दिन और रात्रि बगत तापमान माए बढ़ोतरी आवता 4-5 दिन ताई चालती रेवन रा आसार है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग माए लू बाजती रेवन री शंका है। इबीचे आवता 48 घंटा माए बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माए कठा कठा तेज आंधी सागे छाटो छिटको भेवन री संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिला माए निम्बाहेड़ा गेला माथे वंडर चौराहा कने आज तड़के अनजान गाड़ी री फेंट माए आ जावनु 3 जना री मौके ही मौत वेकी। ऐ लोग मजूरी कर पाछा घर जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800111

0: 7800 मत है 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ये विचार दिया जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ने आस्था दिव्यता और देश री आत्मा री निशानी बतायो। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रे मौके प्रदेश में आई खास आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश में हाईवे माथे बिना रुकिया गाड़िया रा टोल काटन रा नुआ सिस्टम री शुरुआत की। राज्य रा नौजवान में विज्ञान और तकनीकी कौशल बधावन सारू ब्रह्म गुप्त पुरस्कार शुरू करण रो ऐलान। और प्रदेश रा आतुनी हल्का में जबरदस्त गर्मी और लू। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषकों के लिए।

कार्यक्रम कर सको के लिए सुन बड़ा महाराज सगड़ा किशन बेन भाई को था कैश भाई को गण गुण राम राम। किशन भाई आज अपने कार्यक्रम के मायने आप चर्चा करेंगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में और आज की खबर में आप जानेंगा कि मानसून से पूर्व आप खेत की मेड़बंदी की उपयोगिता के बारे में। एक अलावा अपन एक भेंटवार्ता करी छे जो को अपना विषय छे फार्म पोन्ड कृषकों के लिए वरदान एक बारे में आपको बताऊंगा ताराचंद जी महावर जो कृषि अधिकारी छे और बीच में मनोरंजन सुनेंगे प्यारा सा लोकगीत। तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ावा और चर्चा करा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में। किसान भाई मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन योजना छे या एक प्रमुख जल संरक्षण योजना छे इनकी शुरुआत 27 जनवरी 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों को जल का मामला में आत्मनिर्भर बनावा खान की गई थी। ई योजना के मायने बरसात को जल चाहे भू जल चाहे मर्दा जल चाहे या कुछ संचयन के कारण चार जो जल स्रोत है वहां की अवधारणा को उपयोग या करे छे। एको सबसे बड़ा उद्देश्य है कि दीर्घकालीन समय के लिए अपना जल की स्थिरता को सुनिश्चित करवो और भूजल स्तर चापाणो उनको बढ़ावो और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जो पानी है उनको उपलब्ध करावो छे। एक मायने नया जो जल निकासी नाला का निर्माण कर जिसको कहे छे जो बरसात को पानी आपनो व्यर्थ भेर चल जाओ छे वह पानी व्यर्थ में भेर कौन जावे और बरसात का जो पानी छे उनको नालान के द्वारा जो बड़े बड़े अपने तालाब है उनमें मोड़ना जिसो वे अपना तालाब पानी से भर जावे और वहां में वर्ष भर तक पानी भरे रहे जो को अपा देखो बाद में खेती बाड़ी में काम ले सका चा अपने पशु को पिलावा में काम ले सका चा और भी कई काम अपने आ सके। एक अलावा किसान भाई खेतन के अंदर आपको चाहिए कि आप फार्म पॉन्ड को निर्माण करना जिसको कहे जाए कि खेत को पानी खेत में ही रहे और आवश्यकता पड़ने पर आप जो पानी छे उनको दक्षता पूर्वक उपयोग कर आपने जो फसला छे वहां को देर आप अधिक उत्पादन लेवा। एक अलावा किसान भाई जो ई योजना को उद्देश्य छे वह यह कि आप जो पानी बेच जाओ उनको चाहिए अपने जो अपने पास पुराना कुआ छे बावड़ी जो सूख गया वहां के मायने वो पानी को मोड़ दिया जिसो यदि कुआ बावड़ी भर जाओगा तो पानी उमर कहते अपने जीचे जो जमीन छे उनको जलस्तर बढ़ोगे और ये दोबारा सो रिचार्ज की तरह एक तरह से पानी कुआ बावड़ी में जावा सो वे वापिस हो जाओगा। आपने जो पानी छे वह कहे कि जैसे छोटा बड़ा तालाब छे वहां क्या कहे समय समय पर पंचायत के माध्यम से मरम्मत करा लेनी चाहिए जिसो बरसात का पानी कहे छे वहां में व्यर्थ भेर कौन जावे वहां को पानी सही लेनी चाहिए। इसके अलावा जो अपने घर में जो बरसात को जो बरसात बसे छे वहां घर का पानी भी अपने वैसे व्यर्थ भेर चल जाओ छे तो वहां को भी पाइप के द्वारा एक बाहर गड्ढो खोदे या आंगन में गड्ढो खोदे और वो पूरा पानी को ऊके मायनाफा को इकट्ठो कर लेनी चाहिए जो भी आपने देखो बात तक या काम आओ तो इस तरह से।

0: कृष्ण भाई आपको चाहिए जी कि आप पास जो पानी चे उनको आपने समुचित सही उपयोग करा और इसके अलावा आपने देखो कृष्ण भाई बात चलती रहोगी पर सुना एक जरूरी संदेश। कृष्ण भाई आप सुना पाए एक प्यारो सो मनोरंजन लोकगीत।
1: ओ जोशी पतड़ो देख बता दे

0: कृष्ण भाइयों यह सुने अपने मनोरंजन प्यारो सो लोकगीत
1: कृष्ण भाइयों कार्यक्रम को आगे बढ़ावा और आप चर्चा करा कि मानसून सु पहली आप खेत की मेड़बंदी की उपयोगिता के बारे में कृष्ण भाइयों बरसात सु पहली आप चाहिए कि अपने जो खेत से वहां की आप मेड़बंदी करा लेनी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत ही और अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि कार्य है जो अपना बरसात का पानी को संरक्षित करवा में और अपने उत्पादकता को बढ़ावा में कृषि के कारण अपने एक वरदान साबित हो छे। या अपनो जो बरसात को पानी छे उनको कहीं छे जहाँ गिरे छे वहीं पर उनको रोक देव छे। इस सिद्धांत के ऊपर यह काम करे छे जिसो खेत के मिट्टी और पानी दोनों ही सुरक्षित रहे छे। तो कृष्ण भाई आप चाहिए कि मेड़बंदी सो आप बरसात का पानी को खेत का बाहर कौन जवा दिया और खेत में ही पानी संचित होगो तो उसको कहे छे कि अपना भूजल स्तर भी बढ़ोगो। कृष्ण भाई तेज बारिश के साथ में कहे बेर जो अपने उपजाऊ मिट्टी छे वह चल जाओ छे और अपने खेत का मान जो पोषक तत्व छे वे भी देखो बेर चल जाओ छे। तो यदि आप खेत की मेड़बंदी कर देगा तो यूको आप दोनों चीजों को रोक सका छा जिसो अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता उर्वरक क्षमता भी देखो बनी रहेगी। कृष्ण भाई खेत की मेड़बंदी सो कहे कि संचित जो पानी छे वह मिट्टी के मायने लंबे समय तक नमी बनाए रखना छे और जो अपना जो आगामी फसल आप बुआई करेंगे वहाँ की वृद्धि के कारण भी बहुत ही जरूरी छे। कृष्ण भाई आप यूको कहे कि पैदावार की वृद्धि तो इसे होगी क्योंकि फसलों को जो आप जरूरत के अनुसार पानी आपको मिल जाओगे और खेत के मायने देखो नमी भी बनी रहेगी इस वजह से अपने पैदावार में वृद्धि होगी। तो आपको खेत में मेड़बंदी करनी चाहिए जिसको कहे से पानी की कमियों को आप दूर कर सका और अत्यधिक जल भराव आ रही दोनों स्थिति में यह काम करोगे कृष्ण भाइयों और दोनों स्थिति में बचाओगे। कम पानी रहोगे सूखो पड़ोगे तो भी अपने काम दोगे और ज्यादा पानी आओगे तो भी अपने खेत को यह बचाओगे। इसके अलावा आप जो खेत की मेड़बंदी पर आप देखो शीशम का पेड़ से भी लगा सका था सागवान का पेड़ लगा सका था तो कई पेड़ जिसे आप रोपण कर वहां से देखो एक अतिरिक्त आमदनी आप पा सका था। तो कृष्ण भाई बरसात से पहले आपको खेत के मायने मेड़बंदी कर लेनी चाहिए। कृष्ण भाई बात अपनी चलती रहोगी पर सुना।

0: किसान भाइयों ये सुने अपने जरूर संदेश और अब सुनाया भेंटवार्ता। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज अपन पहुंचे हैं सहायक निदेशक कृषि विस्तार सवाई माधोपुर में और यहां पे अपन बात करेंगे तारचंद जी मावर से जो कृषि अधिकारी हैं। तो सबसे पहले तो अपन कहते हैं जी राम राम। राम राम साहब।
1: राम राम किसान भाई।
0: तारचंद जी आप हमारे किसान भाइयों को बताए कि फार्म पॉन्ड कृषकों के लिए किस तरह से वरदान है। हमारा जो किसान भाई है पानी की कई जगह कमी है, अपना बोली है बामनवास है इस क्षेत्र में देखो पानी की समस्या है, वहां पे कई किसान भाइयों ने पानी के लिए फार्म पॉन्ड बनवा भी रखे हैं। तो और अपने यहाँ पे स्वयं माधुपुर में भी अपना किसान भाई को जागरूक होना चाहिए क्योंकि किसान भाई ने फार्म पॉन्ड बनाया तो जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग ले सकता है। तो इसके लिए हमारा किसान भाई फार्म पॉन्ड का निर्माण कराना चाहता है तो उसके लिए क्या उसकी पात्रता होनी चाहिए, क्या क्या उसको चाहिए?
1: बिल्कुल किसान भाइयों, सर्वप्रथम अपने जो फार्म पॉन्ड कोई किसान भाई बनाना चाहता है तो ये फार्म पॉन्ड जो है अपने जहाँ पानी की समस्या रहती है, जहाँ अपने रबी सीजन में जो गेहूँ सरसों चना इस तरह की जो फसलें उगाते हैं उनको जो पानी अपन जो उस टाइम पे उपलब्ध नहीं करा पाते, तो वर्षा ऋतु में जैसे अभी अप्रैल मई जून के महीने में जो अपना गर्मियों का सीजन होता है इस समय में खाली खेत रहते हैं, इनमें जो किसान भाई अपन फार्म पॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं जिसमें जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है उस समय पर जो फार्म पॉन्ड में वर्षा के जल को एकत्रित करके और जब अपने को रबी सीजन में एज ए पूरक सिंचाई के रूप में इसको जो है अपन काम में लेकर एक तरह से जो पूरा अपना जो रबी सीजन अपना खाली जाता है उसमें एक तरह से अच्छा उत्पादन अपन किसान भाई फार्म पॉन्ड के माध्यम से अपन ले सकते हैं।
0: तो इसके लिए हमारे किसान भाई की क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या उसके पास कागजात होने चाहिए, कितनी जमीन होनी चाहिए, कौन सा अपना किसान भाई इसके लिए पात्र है जो अपना फार्म पॉन्ड का निर्माण करा सके? सर
1: ये बिल्कुल किसान भाइयों अपने फार्म पॉन्ड निर्माण करने के लिए किसान जो सिंगल किसान जो है एक किसान के पास मिनिमम जो है 0.3 हेक्टेयर लगभग पौने डेढ़ से पौने दो बीघा के आसपास जो जमीन की आवश्यकता होती है। अगर सिंगल किसान के पास भी अगर इतनी जो जमीन 0.3 हेक्टेयर नहीं है तो ग्रुप में या सह खातेदार के रूप में भी आप ग्रुप में आवेदन करके फार्म पॉन्ड का जो लाभ ले सकते हैं, जिससे 0.3 हेक्टेयर जो पात्रता है अगर वो पूरी होती है तो वो कोई भी किसान भाई जो है फार्म पॉन्ड बनवा सकते हैं।
0: तो अपना किसान भाई जो आवेदन करे फार्म पॉन्ड का तो कहाँ पे जाके किस जगह से जाके करे और क्या क्या उसको कागजात चाहिए?
1: जी बिल्कुल किसान भाइयों फार्म पॉन्ड जो आवेदन करने के लिए आपको जो पटवारी के माध्यम से दो जो दस्तावेज अपनी जमाबंदी, एक तो जो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए और दूसरा जो कागज है वो नक्शा ट्रेस होता है जो अपना खसरा और वो उसमें अंकित किए जाते हैं पटवारी के द्वारा किस खसरे में आप निर्माण करना चाहते हैं, उस खसरे का जो नक्शा ट्रेस जो पटवारी से लेकर आप जो नजदीकी अपने किसान जो ई मित्र है या फिर जो कोई किसान है स्वयं के लेवल से भी अगर आवेदन कर सकता है जन आधार के माध्यम से। आवेदन में राज किसान साथी पोर्टल पर अपने गूगल पर जो राज किसान साथी पोर्टल है उस पर जाकर फार्मर या सिटीजन उसको क्लिक करने के बाद जनाधार जो स्वयं अपन डाले जनाधार अपलोड करेंगे उसमें डिटेल मिलती है, उसके बाद आप जो कृषि विभागीय जितनी भी योजनाएं वो सबकी उसमें जानकारी मिलती है, आप जिस भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं जैसे फार्म पॉन्ड है तो फार्म पॉन्ड पे जाके आप उसमें आवेदन कर सकते हैं और उसके साथ ही अपने जो नक्शा और ट्रेस और जमाबंदी है वो दस्तावेज अपलोड करना पड़ता है और जिस खसरे में आप निर्माण करना चाहते हैं उस खसरे का उसमें अंकन करेंगे तो आप जो है योजना का लाभ ले सकते हैं।
0: अच्छा ताजन जी मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारा यदि किसान भाई को फार्म पॉन्ड बनवाना चाहता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा कुछ उसको अनुदान भी दिया जाता है मतलब इसके ऊपर?
1: बिल्कुल किसान भाइयों सरकार द्वारा जो उसको फार्म पॉन्ड को बढ़ावा देने के लिए वो जो जितना है मैक्सिमम जितना निर्माण अपने होता है इतनी लगभग सब्सिडी जो है किसान भाइयों को दी जाती है।

0: फार्म पौंड जो है अपने दो प्रकार के अपने जिले में जो प्रचलन में, एक कच्चा फार्म पौंड, एक प्लास्टिक शीट में। जिन एरियाओं में जैसे पानी वगैरह रुकने की समस्या आती है, बोली हुआ अपने बावन वास का एरिया है, कुछ जहां पे भी पानी जो रुक नहीं पाता, जमीन जैसे रेतीली बालू जो प्रकार की मिट्टी होती है उनमें जो पानी रुकने की समस्या होती है, उनमें जो किसान भाई प्लास्टिक जो फार्म पौंड भी बना सकते हैं। अनुदान की बात करें तो किसान भाई कच्चा जो फार्म पौंड अगर कोई किसान भाई बनाता है उस पर जो है सामान्य श्रेणी का किसान है तो उसके लिए तो सब्सिडी जो 60% होती है, 60% के हिसाब से जो अधिकतम 63,000 रुपये सरकार द्वारा जो है अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। और जो लघु सीमांत और जो अपने ST/ST के किसान हैं उनके लिए अधिकतम जो अनुदान सीमा कच्चे फार्म पौंड में 70% है, उसके साथ अधिकतम जो है 73,500 रुपये तक की सब्सिडी सरकार द्वारा जो दी जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो प्लास्टिक सीट जो फार्म पौंड है उनमें भी जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनको 80% तक सब्सिडी है, 80% के हिसाब से जो कोई किसान भाई फार्म पौंड बनाता है और उसमें प्लास्टिक सीट बिछाता है तो उसको जो सब्सिडी के रूप में 1,20,000 रुपये तक का अनुदान जो सरकार द्वारा दिया जाता है। और दूसरा जो फार्म पौंड है अपने जो किसान भाई जो लघु सीमांत श्रेणी के और ST/ST के किसान हैं उनके लिए जो 90% तक अनुदान सहायता जो सरकार द्वारा दी जाती है, जो अधिकतम एक किसान को उस पर जो 1,35,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। इस प्रकार किसान भाई जो अनुदान जितना जो अपन निर्माण करते हैं, जैसे अपन कच्चे फार्म पौंड की बात करें तो अधिकतम उसको जो खुदाई पे जो चार्ज आता है लगभग जो 60 से 70 हज़ार रुपये का होता है, जो उसमें जो सब्सिडी आपको इतनी पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा दी जाती है। ऐसे ही प्लास्टिक सीट है निर्माण के साथ साथ प्लास्टिक सीट बिछाता है तो उस पर भी जो पर्याप्त सब्सिडी सरकार द्वारा दे है।
1: सही बात है ताजन जी, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि जिससे हमारे किसान भाई देखो बरसात का जब समय आ रहा है तो जरूर नहीं बरसात सर ज्यादा हो कम हो, हम यदि अपना किसान भाई फार्म पौंड बनवा लेता है तो इससे अपने किसान भाई को देखो किस तरह से उनके लिए आगामी फसल के लिए वरदान साबित होगा, किस तरह से क्या क्या इससे अपना किसान भाई लाभ किस तरह से ले सकता है, क्योंकि बरसात का भरोसा नहीं, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, तो किस तरह से लाभ ले सकता है
0: किसान भाइयों। जो बरसात में अनिश्चितकालीन जो बरसात रहती है उसमें भी अगर मिनिमम अपना जो फार्म पौंड है उसमें कुछ जो 50% या 75% तक अगर पानी भी अपन स्टोर कर सकते हैं तो उसका उपयोग जो अपने जो सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं जैसे ड्रिप है फव्वारे के माध्यम से अगर अपन करते हैं तो लगभग 4 बीघा तक जो है फसलों को जो रबी सीजन में सिंचाई करके अपन जो अच्छा उत्पादन इन फार्म पौंड के माध्यम से अपन ले सकते हैं
1: जी। और ताजन जी आप हमारे किसान भाई को रेडियो के माध्यम से कुछ और सलाह देना चाहते हो, कोई बातचीत आप से छूट गई हो तो एक बार और आप हमारे किसान भाई को सलाह दे दीजिए।
0: किसान भाइयों मैं तो यही कहना चाहूंगा फार्म पौंड का भी जो समय जो अपने खुदाई का जो ये जो समय चल रहा है वो पूरा पर्याप्त जो एक तरह से अच्छा समय है, जिसमें अपने मई और जून माह में जो खाली खेत रहते हैं इस समय पे आप अच्छे जो अधिक से अधिक जो निर्माण जिले में करना चाहते हैं वो किसानों से यही कहूंगा कि जो जल्दी से अपना आवेदन करके और कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से या WSI1 जो हमारे जो ग्राम पंचायत लेवल पर कार्यरत हैं उनसे संपर्क करके आप जो योजना का अधिक से अधिक लाभ लें और जो ज्यादा से ज्यादा आप जो जिले में अगर फार्म पौंड निर्माण करते हैं तो इससे क्या अपने जिले का जो जल स्तर है भूजल स्तर है वो भी अपना जो इंक्रीज होगा, जिससे कि अपने ट्यूबवेल वगैरह कुएं वगैरह उनमें भी पर्याप्त जो पानी की उपलब्धता साल भर तक बनी रह सकती है।
1: सही बात देखो कृष्ण भाई अपन को ताचंद जी ने इतना बढ़िया बताया उसके लिए अपन करते हैं इनका धन्यवाद। राम राम साहब।
2: राम राम।
1: कृष्ण भाई या सुनिया पाने भेंट वार्ता और अब सुना मनोरंजन एक और प्यारो सो लोकगीत।

29 डिग्री सेल्सियस। मौसम का मायना अपने नमी चे 27% की और हवा के चाल भाग गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार शो। तो अब अपनों कार्यक्रम को समय यहीं समाप्त हो रहे, तो कार्यक्रम समाप्त करवा के दो इजाजत था कबाई रिस्कू। राम राम सा।

लोकेशन बनाया हूँ या सुने अपन ने पैरासोल लोकगीत और चलता चलता जाना अपना मौसम का हालचाल। तो आज अपना मौसम के मायने अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषकों के लिए FM 101.5 MHz पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्मी संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं फिल्म गुजारिश के इस गीत से, जिसे आवाज दी है शैल हाड़ा और राकेश पंडित ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गुरु से, और इस गीत को आवाज दी है ए आर रहमान और चिन्मयी ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म मैंने प्यार किया से, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम ने।

फिल्म बॉडीगार्ड के इस गीत के साथ ही फिल्मी संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 101.5 MHz पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सलमा आगा की गाई इस गजल से।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी

तलत अजीज की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के स्वर। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं फिल्म तकदीर के इस गीत से, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ताजमहल से, और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं साहिर और संगीतकार हैं रोशन।

तुमसा नहीं देखा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार हैं मजरू और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

रतन के जोहराबाई अंबाले वाले के गाए इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मी की तो कार्यक्रम यादों के स्वर अब यहीं समाप्त होता है। FM 101.5 MHz पर आकाशवाणी सवाई मधुपुर का रणथंबोर चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन

0: उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य

0: बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
1: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
2: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हिमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं फिल्म हीर रांझा के इस गीत से।

और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है शहर सवाई माधोपुर से जाकिर अली, शादिक अली और रियाज अली ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रंग दे बसंती से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है बोली से निशा शर्मा ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ममता से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन, व्योमिनी और पुरंजय ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संगीत से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है शक्ति नगर उदयपुर से जगदीश माटा और माधव नामदेव ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगला गीत फिल्म डॉन से, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम पचीपल्या सवाई माधोपुर से रामगोपाल वर्मा, कुलदीप वर्मा और मोहिनी देवी ने।

डॉन के इस गीत के साथ ही फोन करें गीत सुनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से

0: होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पुणे से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चित, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद देलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद देलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्ध सत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्ध सत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य, और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था, और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में एबीसीडी भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने

0: मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना, ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब।
0: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिक्कू पै आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहां जाकर मिलो, वहां एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहां फोन किया तो वहां पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहां गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू पै आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए, जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया ये सुना, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
4: अच्छा, आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे

0: छह सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
1: अच्छा अच्छा
0: आ गया हसमुख, आ गया आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वहां का रहा दोस्त, घबराना नहीं।
2: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
0: पागल हो गया, पागल हो गया, मेरा दोस्त पागल हो गया।
2: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
0: कैसे?
2: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान भेज दिया था।
0: क्या?
2: हाँ।
0: किसको?
2: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं भेज रहा था।
0: हाँ।
2: उदित करके सारे जवाब के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
0: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए अंडू पांडो।
3: यस सर।
0: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
4: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो, बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
0: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
5: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।
6: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते

0: मूवी नंबर 1 गुप्त, जंग, तड़ी पार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।
1: आगे सब

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

दिल की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिकवों का अंबार।

खिल उठी है रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

FM 101.5 MHz पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्य

0: से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.5 MHz पर आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। रात्रि के ठीक 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।